0: मेरे साथ सिद्धार्थ है जो कल मुझे रेडियो पे सुन रहे थे एंड टुडे ही वांट्स टू प्ले द गेम विद मी. हाय सिद्धार्थ.
1: हाय हाय रोशि.
0: क्या आप तैयार हो मेरे साथ लव गेम खेलने के लिए?
1: बिल्कुल एब्सोल्युटली.
0: अच्छा तो आज के लव गेम में द स्पेशल गेम वी आर प्लेइंग इज द लव ताक्षरी. तो बेसिकली हम अंताक्षरी खेलेंगे विद द वर्ड. एक ऐसा वर्ड होगा जिससे दो गाने मैं गाऊंगी, दो आप गाओगे. ठीक है?
1: ठीक है.
0: मैं आपको एक कठिन वर्ड देती हूँ और आप पहले उससे गाना गाओगे, सेकंड गाना मेरा होगा और आपका वर्ड है रंग यानी कि कलर.
1: अच्छा, रंग पे है थोड़ी सी धूल मेरी, धरती के मेरे बसंत की थोड़ी सी खुशबू आ रही थी, मस्त पवन की थोड़ी सी झोंकने वाली, लग लग लग लग रस बूंदे दिल में हो बूंद,
0: रंग दे बसंती. अच्छा ठीक है, मेरी बारी अब. ओके. लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, इसमें रंग का. अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे. रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तू रंग, व्हाटएवर व्हाटएवर. आपकी बारी.
1: मोहे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मोहे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मोहे रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे.
0: एक तो आप गाना इतना अच्छा गाते हो कि मुझे गूज़बम्प्स हो गए. दूसरा आप मतलब बहुत ही मेजर नेशनलिस्ट हो यार. दो गाने आपके गाने के लिए गए, दोनों में एक में रंग दे बसंती, एक में रंग दे बसंती चोला. अब मैं कैसे इसको कंपेयर. ओके ठीक है. ए रंग रेज मेरे, ए रंग रेज मेरे, उसमें आगे बोलता है ना कि कौन सा रंग होला है.
1: हाँ,
0: है ना?
1: तो मेरी बता मुझे.
0: हाँ तो मेरी तरफ से मैं सूफी गाने गा रही हूँ, आप नेशनलिस्ट. क्या जोड़ी है हमारी, रोशिफाई कर दूँ आपको. आई थिंक आप रोशिफिकेशन के लिए तैयार हैं. एंड हियर इट इज.
2: यू've बीन रोशिफाइड.
0: आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा दैट आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. एंड दूसरी चीज, आप बहुत सुंदर गाते हैं, हमेशा गाते रहे.
1: थैंक यू सो मच. आपको मुझे कल आपका जो कन्वर्सेशन था इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू जस्ट रैंडमली विदाउट एनीथिंग. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे एक मौका दे दिया आपके साथ बात करने का.
0: चलो ना यार, हम तो मतलब वी आर फैमिली, आप और मैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और ऐसे सुनते रहिए और गाते रहिए. ठीक है?
1: Thank you. Bye.
0: और अगर आप भी ऐसे जिंदगी में सिद की तरह मेरे साथ लव गेम खेलना चाहते हैं, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मैं ना अपनी फेवरेट हूँ, खुद की फेवरेट. ये डायलॉग आपने जब वी मेट में सुना था ना, एंड आई जेन्युइनली थॉट इट वाज अ लिटिल बिट क्रेजी, लेकिन इट टर्न्स आउट कि ये डायलॉग में काफ़ी इफेक्टिवनेस है. इसलिए क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं, खुशी इतनी कॉन्टेजियस होती है दैट द अदर पर्सन एंड्स अप फीलिंग हैप्पी जस्ट इन योर कंपनी. और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मतलब मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, बट बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मुझसे मिलके उन्हें ऐसे वाली फीलिंग आती है जैसे दे आर मीटिंग गीत फ्रॉम जब वी मेट. और फिर वो इतने खुश हो जाते हैं कि मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं. इट काइंड ऑफ हेल्प्स दैट यू नो लाइक पर्सनैलिटी ऐसी है यार, क्या करें. बट अगर आप अपनी किसी डेट पर जा रहे हो ना, डू वट आई ऑलवेज डू. अगर आपका मूड भी खराब है ना, फेक इट टिल यू मेक इट. खुश होने की प्रैक्टिस कर लो, नहीं भी खुश हो, क्योंकि जैसे ही आपका डेट आपको देखेगा एंड ही इज लाइक दिस गर्ल इज सो हैप्पी मैन, वो खुद इतना खुश हो जाएगा दैट ही विल वॉन्ट टू मेक द फर्स्ट डेट इन टू द सेकेंड डेट, एंड इज इन दैट वॉट यू वॉन्ट. तो अगर आप अपने ऐसे ही सपने पूरे करना चाहते हो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इन डूइंग दैट. ऑल यू हैव टू डू इज हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैं अपने लिए एक घर बनाना चाहती हूँ और मैं वो घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ. हो सकता है इस साल ना हो, अगले साल ना हो, उसके बाद वाले साल ना हो, बट द ट्रूथ इज इफ यू हैव मैनिफेस्टेड इट, इट विल हैपन. ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी बेस्टी की स्टोरी है, हु हैपन टू से दिस टू हर बॉयफ्रेंड. और क्योंकि बंदे पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, दिमाग से ऑब्वियो, लेकिन लाइक दे आर सो प्रैक्टिकल एंड वियर्ड. तो वो उसको कहता है कि ऐसे तूने सोच लिया और हो गया, घर ऐसे थोड़ी खरीदे जाते हैं. कट टू माई एक्स बॉयफ्रेंड, हम ऐसे उसके घर में थे और एक बम्बल भी अंदर आ गई. तो मैंने उसे कहा कि मारना नहीं इसे, खिड़की खोल दे और यूनिवर्स को बोल कि इस बम्बल भी को बाहर भेज दे, तो मधुमक्खी अपने आप बाहर चली जाएगी, मारने की जरूरत नहीं. मुझे देख के कहता है तुम लोगों की अच्छी दुनिया है, यहाँ पे ऐसे होती है चीजें, यहाँ पर तो मारेंगे नहीं तो ये खुद हमें काट देगी. एंड आई सेड एक मिनट देना. और मैंने एक्चुअली मैनिफेस्ट किया कि वो बम्बल भी बाहर चली जाए. एंड आई सेड प्लीज बम्बल भी गो आउटसाइड, एंड इट वेंट आउटसाइड. And I'm not kidding you, women are all heart. हम जब magic में believe करते हैं तो हम magic देखते हैं. बंदे on the other hand only believe in erotic thrillers and practicality. We are not in. सुन लिया, we are not in. और अगर आप हमारा दिमाग बदलना चाहते हो, hit me up on Insta या FB. I'll listen to your version. मेरा नाम है Mirchi Roshi. नाम के spelling है Rochie. So now go ahead, hit me up with your stupid practicality और कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो Mirchi. It's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: तो क्या हुआ अगर आपके बर्थडे केक जो आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया था उसको आपके कुत्ते ने थोड़ा सा लिक कर दिया. आपका डॉगी भी तो आप ही का है, इट डजंट मैटर. आपने उसे बस अच्छे से कोट कर दिया विद अ लॉट ऑफ व्हिप्ड क्रीम और वैसे का वैसा डॉगी ईटन केक अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया. शर्म नहीं आई आपको ये करते हुए?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: बट आपकी जिंदगी में जो भी ऐसा कन्फेशन है ना जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो जल्दी से हिट मी अप एंड मीनवाइल आई हैव माय मिस्ट्री कॉलर विद मी. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी गुड. और जब मैंने आपकी कन्फेशन सुनी तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई. मेरे पास कुछ सवाल भी थे आपसे पूछने के लिए, बट लेट्स स्टार्ट विद योर कन्फेशन नॉटी गर्ल.
4: So basically, मेरे को एक कन्फेशन करना है ऋषि आपसे. सो वॉट हैपन्स विद मी इज, सो बेसिकली यू नो आई एम मिडिल क्लास समवेयर. सो मेरे को बहुत ज्यादा फैंटेसी है कि मैं बहुत लग्जरी ब्रांड्स की लॉन्ड्री पहनूं. तो आई यूजली विजिट देयर स्टोर्स एंड आई ट्राई, मतलब अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मैं बस उनको जाती हूँ, आई जस्ट ट्राई ऑल देयर रेंजेस एंड क्लिक माई पिक्चर्स, बट आई डोंट बाय देम. सो व्हेन एवर आई एम टेक्स्टिंग विद माई बॉयफ्रेंड, सो आई जस्ट यू नो शेयर माई पिक्चर्स विद हिम. सो अब मुझे ऐसा होता है कि मैं उन्हें खरीद तो पा नहीं रही हूँ, बट मेरे को दिल बहुत होता है दैट आई शुड ट्राई देम. सो आई एम डूइंग दिस अ लॉट ऑफ टाइम.
2: माय गॉड, आपका बॉयफ्रेंड तो खुश हो जाता होगा.
4: समवे यस, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी.
2: क्यों?
4: सब हम लोग एक दूसरे के सामने होते
2: हैं,
4: देन आल्सो आई प्ले स्मार्ट.
2: क्या करते हो आप, मतलब तब तो उसको ही एक्सपेक्ट्स ना कि आप ये ऐसे हाई ब्रांड का लॉन्ड्री लाइक यू बी वेयरिंग इट और आपके पास तो है नहीं, तो फिर क्या करते हो?
4: I play a little smarter, so मैं थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड होकर खुद के खुद ही कपड़े उतार देती जल्दी से. And I show him that I'm more exciting.
2: यार तू तो कमाल की बंदी है, तेरे जैसे इंसान को मतलब I'll be happy to roshify you. Can I please roshify you, my darling?
4: Yes, please.
2: Okay, there you go, my darling.
0: You've been roshified.
2: मजे आ गए आपका एक कन्फेशन सुन के. It was absolutely incredible. ऐसी गंदे काम फिर से किए तो फिर से बता देना फोन करके, ठीक है?
4: डन डन.
2: और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई इतनी रैंडो कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पुरानी रोमांटिक पिक्चरें देखने में जो मज़ा है ना वो शायद कंटेम्प्रेरी फिल्म्स में नहीं आता फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न. आई रियलाइज़ कि जब भी मैं कभी कभी या सिलसिला या इवन लम्हे जैसी कोई फिल्म देखती हूँ ना मेरे अंदर जितना भी मरा हुआ रोमांटिक होता है ना वो सडनली जाग जाता है एंड इट्स लाइक कहाँ है मेरी ज़िंदगी में असली प्यार. एंड आई गेस इट्स बिकॉज उस ज़माने की पिक्चरें ऐसी होती थी दैट वो इतनी हाई ऑन इंटेंसिटी एंड रोमांस होती थी जैसे दिल से इवन व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी कि आपके अंदर अगर रोमांटिक इमोशंस मर गए हैं तो वो ये पिक्चरें देख के आई स्वेयर जाग जाते हैं. तो अगर आप सिंगल हो एंड यू वांट सम रोमांस बट आपको बंदे के साथ रोमांस नहीं करना है बस दो तीन घंटे के लिए प्यार एक्सपीरियंस करना है माई सजेशन इज़ यू गो बैक एंड रिविजिट यश चोपड़ा की क्लासिक रोमांटिक फिल्म्स. और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका रोमांस कोशंट कम हो गया है देन टू वॉच दीज रियली सॉपी मशी चीजी रोमांटिक फिल्म्स क्योंकि एज मच एज इट साउंड्स लाइक अ क्लीशे सच बात तो ये है कि ऐसी पिक्चरें देख के थोड़ी देर के लिए सही हमारे अंदर ना वो जो टीनेजर वाला रोमांटिक इंसान है ना जिसे हम कहीं बहुत दूर पीछे छोड़ा है That kind of comes back to life and दुनिया में romance से बड़ी खूबसूरत feeling क्या है. अगर आपको इसका answer पता है तो feel free to hit me up about it insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है ROCHIE. But seriously पता है जिसके पास love है ना उसके पास सब है. And I love you loads.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची.

0: आज मैं नहीं बोलूंगी, आज कोई और बोलेगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में इतनी खूबसूरती से सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बातें की, वही कॉन्वर्सेशन आज हम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं।
1: जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही है वो। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है, मैं मोहम्मद रफी बाबा को मानता हूँ। उनको मैंने वैसे ही प्यार किया, और इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरे म्यूजिक को सुना है, वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई, ये कोई फरिश्ता है, ना केवल गाने के बारे में, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना, जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तो मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी खास पर्पस से आए थे।
0: ऐसी ही और बातें थोड़ी देर के बाद, राइट हियर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ, पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची। मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ, पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

0: सोनू निगम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद रफी साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक अलग तरह का संगीत है क्योंकि एक चेला जब अपने गुरु के बारे में बात करता है तो वो संगीत ही सुनाई देता है। एक इवेंट में दिल खोल के ऐसे खूबसूरती से सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बात की, वही बातचीत हम सुन रहे हैं, तो सुनते हैं।
1: एक बहुत बड़ा फर्क जो रफी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं, हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग, इन लोग के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो ये जो किया ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए, गजल गा रहे हैं तो गजल का ठहराव आना चाहिए। तो ये बंदे अलग ही थे, ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे, द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था।
0: हाउ ब्यूटिफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
1: दीवाना।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
2: ये चांद सा रोशन चेहरा

मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनियन मिर्ची। मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनियन मिर्ची।

0: एक बहुत ही खूबसूरत गाने में मोहम्मद रफी साहब की गायकी को कैसे एक्सप्लेन किया सोनू निगम ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में उन्होंने ये शेयर किया था, सुनिए।
1: उनका गाना है

0: कैसे किसी को याद सताती है, यार तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे। तू तो ना आए तेरी याद सताए, इसके थर्ड इंद्र में एक लाइन आती है, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है बहुत।
1: भाई गाना तो सुंदर है ही, जिस तरह से सोनू निगम ने एक्सप्लेन किया ये और सुंदर लग रहा है सोच के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi, It's Hot.
2: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: हम डिस्क्राइबिंग मोहम्मद रफी साहब के गाने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक अलग ही तरह का ऑडियो डिलाइट है। सुनिए एक इवेंट में मोहम्मद रफी साहब के गाने के बारे में सोनू निगम ने क्या शेयर किया।
1: एक गाना है इनका, छू लेने दो नाजुक। अभी तो टी टॉट बंदा है, शराब तो कभी पी नहीं है, तो ये कैसे इस चीज को बयां करेंगे? क्योंकि कोई थोड़ा इमेच्योर सिंगर हो तो वो क्या करेगा, छू लेने दो नाजुक होठो, वो ऐसे कर देगा। इमेच्योर सिंगर, इस बंदे को पता है कि कितना नशा दिखाना है, कितनी गायकी भी आ जाए, बेसुरा भी ना गाऊं और लगे कि बंदा थोड़ा बेसुधी में गा रहा है। इस गाने को आप ध्यान से सुनिए, कितना बैलेंस से एक शराब का नशा भी दिखाया है पर ओवरडो नहीं किया है कि मतलब लगे कि यार ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया।
0: तो अब आप जब ये गाना सुने तो ये ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक इवेंट में सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में बहुत खूबसूरत बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके गाने डिस्क्राइब किए, वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी और सुनते हैं।
1: ये गाना है इनका, ये गाना LP का फर्स्ट गाना था, इन्होंने गाया था। और ये लक्ष्मी के प्यारेलाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। वो गाना था तेरे प्यार ने

0: नाज नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार में।
1: वह लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का एक और खूबसूरत कॉम्पोजिशन संग बाय मोहम्मद रफी राइटर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची
1: मेहरबान।

0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज कैसे हर एक्टर पे सूट कर जाती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए इस बात को एक इवेंट में सोनू निगम ने कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया था।
1: अब यही बंदा गा रहा है हम काले।

0: खानदान में लगता है कि मैं मोदी घर। और ये आदमी कह रहा है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आज जा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। ये कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार भी शूट कर रही है, जॉनी वॉकर भी शूट कर रही है, महमूद भी शूट कर रही है, और मतलब और ऋषि कपूर पे भी शूट कर रही है।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। यही बात है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियां मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: एक इवेंट में सोनू निगम ने रफी साहब के बारे में क्या कमाल की बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: बहुत कमाल की मैं बताता हूँ। देखो सिंगर का क्या होता है, कंपोजर को बाईपास करना पड़ता है। ये तो सुनिए आपको, अब ये गाना है, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा है ना। तो ये एस जी वर्मा साहब की आवाज ये है। तो सिखाए कैसे होंगे गाने तेरे।

0: सोनू निगम को मोहम्मद रफी साहब के बारे में बातें करते हुए सुनना अपने आप में एक संगीत है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इवेंट में उन्होंने रफी साहब के बारे में बहुत सारी बातें की, वही बातें हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: मैंने शुरुआत में अपने करियर की, क्योंकि हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में तो और कोई जरिया नहीं था उस समय, तो शोज सिर्फ ऐसे होते थे, शादियों के शोज या बर्थडे के शोज ऐसे। तो मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे शोज कर रखे हैं। मैं बड़ा हैरान होता कि अगर दुल्हन आ रही है, बहारो फूल बरसाओ, किसी के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, देशभक्ति का है, लाइन लगे पड़े रफी साहब के, मतलब कोई भी है ना, कुछ भी हो रफी साहब के ही गाने बजते थे। शराबी अगर लोग डांस कर रहे हैं तो मुझे दुनिया वालो शराब छलकाए जाम, तो शराबी बड़े खुश हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, आए तो रफी साहब के गाने ही होते थे हर मौके पे, हर अवसर पे वो जो गाने चुने जाते थे।
0: बहुत ही सुंदर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मेरा
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: मोहम्मद रफी के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मोहम्मद रफी की बातें और उनके गाने मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन ये बातें हम सोनू निगम की कही हुई सुन रहे हैं जो एक इवेंट में उन्होंने शेयर की थी। सुनिए।
1: नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाने को जितना इनसिक्योर आदमी गाता है ना, वो ज्यादा हरकत दिखाता है, और जिसको अपने काम पे सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है, वो हरकत लेगा लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ले भी लिया, ये कब हुआ। तो ये गाना है, हुई

0: सवाला, हरकत ये होती है सवाला गया।
1: तो ऐसी ही सुंदर हरकतों वाला एक और गाना सुन लेते हैं रफी साहब का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक इवेंट में सोनू निगम ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में इतनी खूबसूरती से बहुत सारी बातें की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही बातें आज हम सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी और सुनते हैं।
1: अच्छा, दुनिया का सबसे फेमस इंडिया का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? मोहम्मद रफी। कुछ हो रहा ही है, देशभक्ति इन्होंने गा रखे है, भजन इन्होंने गा रखे है, कवाली इन्होंने गा रखी है, राखी के भी गाने गा रहे हैं, सैड सॉन्ग इन्होंने गा रखे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं, ऊंची आवाज ये गा चुके हैं, गजल ये गा चुके हैं, छोड़ा क्या है, लोफर सॉन्ग्स गा चुके हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं किस और किसको प्यार करो, मैं पता कैसे प्यार कर। लगता है कि ये आदमी, ये कौन है आदमी, ये कितना बदमाश होगा, कोई कह सकता है कि ये आदमी से बोलेगा आ जा, आओ आ जाओ आ जाओ, ये कोई कह सकता है कि ये आदमी ऐसा होगा, कितनी मस्ती करते आदमी। ये एक ऐसे वॉल्केनो थे जो सिर्फ माइक पे फटते थे, इनके अंदर में सब भरी थी मस्ती, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर, सब इनको पता होगा, अंदर से सब इनके खुराफात भरी पड़ी होगी, पर वो दिखाते नहीं होंगे, वो गाने में उसको अभिव्यक्त करते थे। सो दैट इज द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब।
0: हाउ ब्यूटीफुल, सोनू निगम की बातें भी और मोहम्मद रफी साहब के गाने भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला, कौन बोला?

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट रेडियो मिर्ची।
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री, सावित्री त्रिपदेक्षरे, अजरे अमरे मातः, त्राहि माम शरणागतम्। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बुजुर्गों की सेवा में कंपैशन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है इस एज में बहुत लोग इसको इमोशनल ड्रामा की तरह भी यूज करते हैं। ड्रामा एक शब्द है जो मैं अपने फ्रेंड से लेके आया, वो कहते हैं यार कुछ भी बोलो मम्मी जी को, वो कहती हैं हाँ भैया मैं तो मर जाऊंगी, तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो। वो कहते हैं यार इतने टॉन्ट की तो जरूरत भी नहीं थी, मैं तो सेवा ही कर रही हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां होंगी, आप प्यार से बोल दो। बोलते जब मैं सेवा कर रही हूँ और सब कोई लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाई एम आई गेटिंग ऑल दिस ट्रीटमेंट, तो वो बहुत परेशान रहती है। तो इस उम्र में आके बहुत लोग नेगेटिविटी नहीं, बहुत मे बी इरिटेबल है, बीमार है, पता नहीं क्या, बीमार भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बस तुम तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो, और वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, मैं तो चाहती हूँ आप जिए।
4: इट इज ओके, वो अपने दर्द में, देखो जो दर्द वाला होता है ना वो दर्द ही देता है। समटाइम्स यू नो व्हेन पीपल आर सेइंग ऑल दीस स्टेटमेंट्स, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ देयर, जो उनके अंदर में दर्द होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जो हम बोल रहे होते हैं ना वो हमारे अंदर की मन की स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर कोई बहुत दर्द में है तो फिर वो ऐसी बातें, देखो ये तो वो ये कह रहे हैं हाँ तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। कभी कभी तो माँ अपने बच्चे को नहीं कहीं पर बहुत स्ट्रांगली कहीं पर गुस्से में कह देती है तो पैदा होते ही मर जाता। हाँ, ऐसे
3: बिल्कुल
4: बहुत वेज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मुख से निकल जाते हैं, हम कहते हैं क्या बोल रहे हो, शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं है वो दर्द में है। कौन, कोई भी माँ थोड़ी ना चाहती कि वो पैदा होते ही मर जाता, पर कभी कभी जब वो बहुत दर्द में होती है उसके मुख से ऐसा निकल जाता है। सो जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर कंपैशनेट, उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद बहुत दर्द में है और वो दर्द कई बार झलक झलक के इन बातों में ऐसी स्टेटमेंट से निकलता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पॉजिटिव बोलना सिर्फ आदत नहीं, एक जिम्मेदारी क्यों है, समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरी मम्मी और मेरे बीच में ऐसा रिश्ता था जहाँ हम एक दूसरे को ये कहते थे, तो मम्मी मेरे को कभी कभी कहती थी जब मैं मर जाऊंगी तब तुमको याद आएगी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि अब तो याद आती है उनकी नेचुरली बहुत, पर हमने उसको जोक में लेना शुरू कर दिया। तो जब भी वो ऐसी बात बोलती है मैं बोलता तो एक दूसरे को देख के फिर हम हंसने लगते कि क्या बात कर रहे हैं, तो एक जोक हो गया।
4: फिर भी ऐसे शब्द हम न यूज करें, वर्ड्स की भी एक पावर होती है।
3: बिल्कुल,
4: थॉट्स की भी पावर होती है, वर्ड्स की भी पावर होती है। हमारे यहाँ तो हमेशा कहते हैं ना शुभ शुभ बोलो, तो शुभ शुभ सोचो, सोचने से पहले भी सोचो, सोचने से पहले भी बोलो। ऐसे वर्ड्स हम न ही यूज करें तो अच्छा है, इसलिए हमारे तो क्या कहेंगे, कोई भी होगा ना कहेंगे लंबी आयु हो, जुग जुग जियो, इस तरह से वरदान। मतलब वर्ड्स में भी वो एनर्जी रखते हैं कि आपकी लंबी लाइफ हो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर अवतरण।

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: क्यों कुछ लोगों को ये डर होता है कि उनके जाने के बाद उन्हें भुला दिया जाएगा, जानते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: एक सिस्टर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक फिल्म आई थी कोको कुछ सालों पहले, उसमें बहुत खूबसूरत चीज का वर्णन था कि बहुत बार इंसान को इस चीज की दिक्कत नहीं होती कि हम मरने वाले हैं, उनको इस बात की दिक्कत होती है कि हम ये सब भूल जाएंगे। और ये जो थॉट है कि यार नोबडी विल रिमेम्बर मी, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसके कारण, और हम भी कहते हैं ना कि भाई काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें, कुछ ऐसा करो जिंदगी में कि मतलब तुमने ऐसा कुछ तोड़फोड़ कर दिया कि पीपल विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू।
6: व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ पीपल फॉरगेट यू? जस्ट टू थिंक अबाउट इट, एक बारी इसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि आपने एक अच्छी जीवन जी और आप चले गए, अब पीछे वाले अगर इफ यू हैव टच्ड पीपल इन सम वे, कभी ना कभी आपको याद करेंगे, दिल से दुआ भी देंगे, पर ऐसा मुझे कुछ करके जाना है जो वो हमेशा मुझे याद रखे। मैंने अगर कोई हमें भूल जाता है तो इसमें इतना क्या बड़ी प्रॉब्लम? वी लिव्ड अ लाइफ वेल, वी एंजॉयड वेल एंड देन वी मूव्ड ऑन, और अगर वो पीछे वाले भूल भी गए तो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा माइंड सेट है? इतना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट क्यों है कि उनको हमें याद रखना है और हम ऐसा कुछ करें कि सारे सब हमें याद रखे? भाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपने अपनी जर्नी पीसफुली जी, आपने किसी को दुख नहीं दिया, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपने एक बहुत एथिकल मॉरल जीवन जिया, आप बहुत पीसफुल कंटेंट थे, अपने तरीके से जिया। इवन इफ यू आर नॉट वेरी फेमस, एक दिन आया आप चले गए, यू लिव्ड योर लाइफ वेल, पीपल अराउंड यू व्हेन दे थिंक ऑफ यू दे थिंक वेल ऑफ यू, इज इट? डोंट यू थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट?
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हमारी जिंदगी का असली पर्पस क्या है, आइए जानते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: लेकिन अक्सर जो जिंदगी जी रहा होता है उसका मकसद यही होता है कि कुछ तो ऐसा करूं कि लोग मुझे याद रखें, वरना मेरा जीवन है वो बेकार सा हो गया। नहीं,
6: जीवन का पर्पस क्या है? बेकार हम कह तो रहे हैं पर मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? व्हाट यू वांट इन लाइफ? लोग भी आपको क्यों याद रखें, उससे क्या होगा?
5: पता नहीं क्या होगा, बट कहते हैं ना कि भाई
6: नहीं सोच लेते हैं ना, हम कहते हैं वो हम जाएं तो वी लीव अ मार्क, वो हमें याद रखे। हाँ। क्यों क्यों मना, क्या होगा उससे?
5: जब आप जी रहे हैं तो जिंदगी में इम्पैक्ट करें किसी के, हम लोगों में खुशियां बांट सके, उनके जिंदगी में कोई

0: ऐसा काम करें कि उनकी जिंदगी बेहतर हो।
1: इम्पैक्ट करना अच्छी बात है, दैट इज व्हाई आई सेड फेमस होना जरूरी नहीं है,
0: इम्पैक्टफुल होना जरूरी
1: है। इम्पैक्टफुल तो होना, इम्पैक्टफुल तो क्या है, जो अगर हमने अगर इतना भी केयरफुली अपना जीवन जिया कि किसी को दुख नहीं दिया, सो डोंट यू थिंक यू लेड अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल लाइफ, कि जब वो आपको याद करते हैं तो कहते हैं अच्छे इंसान थे, मैं जब उनसे मिला मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगता था,
0: वो ही काफी
1: तो
0: है।
1: वो भी बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत इम्पैक्टफुल लाइफ जी, आपने एक बहुत लेगेसी छोड़ी, यू लेफ्ट अ कंपनी बिहाइंड, इतने इतने करोड़, इतना सब कुछ, एवरीथिंग, बट व्हेन दे थिंक अबाउट यू, अरे वो तो ऐसे
0: बहुत बेकार इंसान थे, वो अच्छी बात
1: या बहुत गुस्से वाले थे, या बहुत कंट्रोलिंग थे, या बहुत डोमिनेटिंग थे, तो क्या इम्पैक्ट आपने डाला। इम्पैक्टिंग लाइफ मीन्स यू रियली ब्रॉट समथिंग इन देयर लाइफ ना, चाहे खुशी, चाहे अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट, आई थिंक वो एक लेगेसी होती है।
0: बिल्कुल,
1: हाउ मेनी पीपल यू रियली इम्पैक्टेड इन अ पॉजिटिव मैनर।
0: जब आप सोचे तो आप उनके बारे में खुश होके सोचे। फ्रांस,
1: मैं रियली ये समझती हूँ कि ये प्रेशर अपने पर नहीं डालें,
0: नहीं लेना चाहिए,
1: ये मत प्रेशर डालें कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें याद करें, ये इस ऐसे प्रेशर से नहीं जीवन जीना चाहिए, खुशी से जिए, कंटेंटेड हो, सुख दे।
0: क्या बात,
1: अगर इतना भी स्लोगन याद रहे ना, न दुख देना है, न दुख लेना है, सुख देना है और सुख लेना है, बहुत बढ़िया जीवन है, बहुत इम्पैक्टफुल है और बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं।
0: बहुत खूबसूरत बात कही आपने, एंड आई थिंक दैट शुड बी द मूल ऑफ लिविंग लाइफ।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Thoughts और feelings का positive होना life को direction क्यों देता है? समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और एक और खूबसूरत बात मुझे याद आई, फ्रांस काफ्का जो है बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत कमाल की किताबें लिखी हैं, उन्होंने कहा कि एनीवन हु हैज द एबिलिटी टू सी ब्यूटी इन एवरीथिंग नेवर ग्रोज ओल्ड। वो कभी बूढ़े होंगे नहीं, क्योंकि हर चीज में उनको खूबसूरती दिखती है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किताब हो। तो आई थिंक अगर हम अपनी जिंदगी ऐसे जी सकें कि हर चीज में हमको ब्यूटी नजर आए, तो वी विल नेवर ग्रो ओल्ड।
4: इनर वर्ल्ड अगर अच्छा है ना, इनर वर्ल्ड में आपके थॉट, आपका फीलिंग, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सपेक्टिव, इनर भी तो एक बहुत दुनिया है ना, उनके बाहर की दुनिया। ये जो इतना लोनलीनेस, खालीपन, अकेलापन, कि इनर वर्ल्ड जो है वो बहुत क्योटिक है। अगर आपकी सोच ब्यूटीफुल है, आपकी पर्सपेक्टिव जो आपने कहा, यू कैन सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, आपका एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव है, आपकी फीलिंग्स के अंदर प्योरिटी है, एज तो कोई मतलब ही नहीं है। यू कैन रियली फील फुल एनी एज में, आप एंजॉय कर सकते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Physical beauty, life ka center kyun nahi hona chahiye? Physical beauty, life ka center kyun nahi hona chahiye? Jante hain.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक्चुअली एज को कहीं ना हम फिजिकल ब्यूटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे शुरू में आपने कहा कि हम कैसे दिख रहे हैं वो सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के कारण, जो भी हो। मुझे याद है कई साल पहले मैं एक बहुत खूबसूरत महिला, बहुत अच्छी दोस्त है, उनसे मिला और शी वॉज ऑब्सेस्ड अबाउट हर लुक्स। अब शी इज गॉन टू स्पिरिचुअलिटी, वो इतना नहीं सोचती है, लेकिन मुझे याद है पहली बार ये शब्द मैंने सुना था, ये फ्रेज मैंने, इसके पहले मैंने कभी सुना था। शी सेड आई हैव गॉट क्रोस फीट, तो मैं उसके पैर की तरफ देखने लग गया। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पैर तो ठीक ही लग रहे हैं। कहते नहीं, ये देखो मेरे आंखों के आसपास एक क्रोस फीट हो गया। तो पहली बार मुझे समझ में क्रोस फीट क्या होता है। मैंने कहा ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन तो क्या हुआ, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। वो कहते नहीं, ये नहीं है, सही नहीं है, मुझे ये क्रीम लगाना पड़ेगा, वो क्रीम लगाना पड़ेगा। और इत्तेफाकन कुछ दिनों बाद में उससे मिल रहा था, किताब पढ़ रहा था, और वहां पे एक बहुत खूबसूरत लाइन थी, तो मैंने उसे कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्विंकल इन योर रिंकल। और जब भी हम मिलते हैं हम इस लाइन के बारे में बात करते हैं और हम बहुत हंसते हैं, और कि झुर्रियां तो पड़ेंगी, ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन अगर हम वो झुर्रियां जो हैं, वो कहते हैं स्माइल्स रिंकल्स आल्सो रीच वेयर योर स्माइल्स हैव ऑलरेडी। अगर हम ये बात हंसी खुशी में अपनी जिंदगी बिता दें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: इसको लाफ्टर लाइंस भी बोलते हैं,
3: लाफ्टर लाइंस। हां,
4: इट्स
3: और ओवर अ पीरियड टाइम में पड़ेंगे
4: और अच्छी लगती है। आई मीन वो कहते हैं माथे पे लाइन नहीं होनी चाहिए,
3: शिकन नहीं होनी
4: चाहिए, शिकन नहीं होना चाहिए, वो लाइन अच्छी नहीं लगती। पर अगर आपके आंखों के नीचे या चेहरे पे, तो वो तो एक साइन है दैट यू हैव लिव्ड योर लाइफ ब्यूटीफुली।
3: हां,
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते।
0: टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आगे बढ़ने के कौन से पहलू वाकई खूबसूरत होते हैं समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो बीच वाले एज में होते हैं, ना ज्यादा यंग हैं ना ज्यादा ओल्ड हैं, उनको ज्यादा दिक्कत होती है कि यार हम बुढ़े हो रहे हैं। बट बुढ़ापा जो है वो एक तो हमने डिस्कस किया मन में होता है, और इंग्रिड बर्गमन जो है वो बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी, वो कहती हैं कि ग्रोइंग ओल्ड इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, यू गेट आउट ऑफ ब्रेथ बट द व्यू इज आउटस्टैंडिंग।
4: एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई आई सेड व्हाट शी सेड इज सो ब्यूटीफुल, व्यू इज
3: ब्यूटीफुल,
4: दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर व्यू ब्यूटीफुल है सो व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक।
3: एब्सोल्युटली,
4: आप मैच्योर होते गए, एक्सपीरियंस्ड होते गए, यू लर्नड, विजडम है आपके अंदर और ज्यादा, वो बचपना नहीं है, तो यू सडनली सी लाइफ सो डिफरेंटली। पर वही चीज है ना कि अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, मुझे लगता है इट इज ऑल्सो अ लॉट टू डू विद एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल मीडिया एंड द होल बज जो है ना, मतलब वो भी एक सोसाइटी के थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम बार बार यही सुनते रहते हैं कि ऐसा दिखना है यही सब, तो फिर आप वैसे बनने लग जाते हैं। लाइक आई सेड ना, इन्फॉर्मेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है।
3: बिल्कुल।
4: तो आप खास हमारे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑब्सेस्ड हैं कि आप कैसे दिखते हैं, वो सारे सम ऑफ दी सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टा वो बने ही उस पर हैं कि हाउ यू लुक, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू फील, इट्स अबाउट यू लुक। एंड यू नो फिर उसमें वो दिखाएंगे कि यू हैव दैट स्माइल जब वो फोटो खिंचनी है, एंड द मोमेंट वो फोटो खिंच गई यू आर अगेन सैड। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, यू कुड बी फीलिंग मिजरेबल बट यू कैन क्लिक दैट फोटो विद दैट परफेक्ट स्माइल। और इसीलिए अगर हम अपने फोटोज देखें ना इस दुनिया की, तो आपको लगेगा इट्स द हैप्पीएस्ट जनरेशन।
3: जी बिल्कुल,
4: हैप्पीएस्ट जनरेशन इफ यू कम अक्रॉस एनीबडीज फोटो। आधार कार्ड का फोटो तो कोई नहीं लगाता।
3: सबसे वाहियात फोटो उसी में,
4: जस्ट टू कम टू थिंक ऑफ इट, है तो वो भी हमें ना, पर वो तो कोई नहीं लगाता। यू डोंट इवन वांट टू, आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट पे भी दिखाना हो तो आप उसको थोड़ा छिपा के दिखाते इस तरह से। बट द होल आइडिया इज कि हाउ यू आर फीलिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हाउ यू आर लुकिंग बट इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। एंड दैट इज व्हाई कभी कभी किसी आप बुजुर्ग महिला से भी मिलेंगे, ओल्ड वेमेन ऑल्सो विद ऑल द रिंकल्स विद यू नो, बट यू नो शी मे से समथिंग, वो कॉन्वर्सेशन कई बार हो गया, आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटिफुल वेमेन, शी इज नॉट ब्यूटिफुल फिजिकली बट आपके मुख से निकल जाता है व्हाट अ ब्यूटिफुल वेमेन। वन टाइम देयर वाज अ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन कुछ साल पहले, एंड जिसमें वो फोटोग्राफी वॉज ऑन ब्यूटी, एंड द फोटोग्राफर हु वन वॉज अबाउट अ बुजुर्ग महिला थी, लेकिन उसने उसकी जो कंटेंटमेंट थी, जो उसकी चेहरे पर स्माइल थी, जो उसकी पीस थी, उसको कैप्चर किया था, एंड उसको प्राइज मिला था ब्यूटी का, कि ब्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो स्किन एंड द कलर, एंड इट्स मोर अबाउट आप क्या फील कर रहे हैं, वो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो।
0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: मोहन पाटिल पूछ रहे हैं कि कोई अच्छा काम करने जाता हूं तो सबसे पहले नेगेटिव विचार मन में प्रभाव डालते हैं। इन नेगेटिव विचार को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं?
3: ट्रांसफॉर्म करते उनको। नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है, एनवायरनमेंट भी कई बार उसमें कंट्रीब्यूट करता है। आप कुछ नया करने जाते हैं, दो चार कह देते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जो कर रहे हो वही करते रहो, क्या जरूरत है। तो अपने साथ बैठ करके कहें, नहीं मुझे करना है, बहुत अच्छा होगा, होना ही है। कोई चैलेंज भी आ सकता है पर उसको ओवरकम करेंगे, फेलियर भी हो सकता है पर मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा, मिस्टेक भी हो सकती है तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कौन से सफल लोग हैं जिन्होंने भूले नहीं करी या मिस्टेक नहीं करी। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, वो बहुत जरूरी है, फिर आप उस चीज को कर लेंगे।
2: तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सामने से अगर काला भी आ रहा है तो आप सफेद फेंकते रहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।
1: बड़ो लोग

0: बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. अरे यार उठ जाओ यार, कॉफी बाद में भी बन जाएगी लेकिन पहले थोड़ा सा मूड तो बना ले। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और आज की सुबह अभी अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन मिर्चीदार शो यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स सुबह सुबह वाला अभी अभी शुरू हुआ है। अब चाहे तुम ऑफिस के लिए ट्रैफिक में हो या फिर ट्रेन पकड़ रहे हो या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर पजामा फैशन वीक चला रहे हो या फिर सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों के लिए और आज भी तुम्हारे लिए होने वाली है मेरे पास ढेर सारे बॉलीवुड की गॉसिप्स, ढेर सारी ऑफिस पैंट्री से ज्यादा गर्मा गर्म गॉसिप्स, फन स्टोरीज एंड मिर्ची की वाइब्स एंड साथ साथ में होने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू। ये सब कुछ होने वाला है इस मॉर्निंग शो में जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। तो कभी ट्रैफिक, कभी ट्यून्स, कभी तवा, कभी टैब्स और कभी टिफिन, इन सब के बीच में थोड़े से हिट्स भी मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ। नाम है मेरा प्रिसिला, मुझसे बातें कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए गुड मॉर्निंग है जी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट
1: विद मिर्ची, फ्रेश माल।
2: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और टाइम हो चुका है देखने का कि आज के दिन पुराने टाइम में क्या हुआ था। सबसे पहले चलते हैं 1498 में, जब एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार ट्रिनिडाड आइलैंड देखा था। फिर आते हैं 1658 में, औरंगजेब ने खुद को मुगल एम्परर डिक्लेयर किया था, मतलब सेल्फ प्रमोशन का कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ था। 1933 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था और सिर्फ 60 साल बाद 1940 में एक ऐसा नाम जिसने हिस्ट्री में अपनी अलग ही जगह बनाई थी, शहीद उधम सिंह जी, लंदन की पेंटोविल प्रिजन में उन्हें फांसी दी गई थी। आफ्टर ही असैसिनेटेड माइकल ओ डॉयर, द फॉर्मर पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन रिवेंज फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। उनकी कहानी आज भी हिम्मत और बलिदान की मिसाल मानी जाती है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, अपोलो 15 के एस्ट्रोनॉट ने मून पर पहली बार लूनर रोवर चलाया, मतलब मून पर लोग जाकर ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पर रोड्स पर पॉटहोल से हम अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं। और 1991 में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने स्टार्ट वन ट्रीटी साइन किया न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए। कभी कभी दुनिया को थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ता है। और ऐसे कुछ फैक्ट्स तुम्हें अगर पता है हिस्ट्री के बारे में तो तुम शेयर कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, Mirchi Morning to you. Mirchi Mornings पर मैं बोले तो Priscilla तुम्हारे साथ में हूँ और अब स्पोर्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट शर्मिला धनकर ने एक हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि उनकी पहली शादी सिर्फ 18 इयर्स की उम्र में हो गई थी, जहां उन्हें बार बार डाउरी के लिए और दो बेटियों की मां बनने के लिए अब्यूज किया जाता था. उन्होंने एक बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, उन्होंने रात को 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक उन्हें असॉल्ट किया और फिर उनको घर से बाहर निकाल दिया. उस रात के बाद वो कभी भी वापस अपने इन लॉज के घर नहीं गई और फिर अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने की उन्होंने ठानी. एंड आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है. कभी कभी लाइफ हमें बहुत बुरे चैप्टर्स दिखाती है और हमें लगता है कि हमारा गेम ओवर हो चुका है, मतलब लाइफ में हम हार चुके हैं. लेकिन एक्चुअली लाइफ उस टाइम तुमसे एक्सपेक्ट कर रही होती कि तुम स्ट्रेंथ दिखाओ, अनवेवरिंग स्ट्रेंथ दिखाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी कहानी चेंज करनी है. दीज बैड चैप्टर्स आर नॉट योर स्टोरी. और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये बैड चैप्टर्स कभी कभी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं. बिकॉज जितना बड़ा विलन होगा तुम्हारी लाइफ में, उतने ही बड़े सुपर हीरो बनकर तुम सामने आओगे, है ना. और इसी बात पर बजाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स. जब तक तुम जाकर मुझसे बातें करो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, मेरे हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागिन.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर ना उस दोस्त की तरह है जो दिखने में बड़ा ही इनोसेंट है लेकिन एक्चुअली बड़ा उस टाइप का है। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स पर। चलो देखते हैं कि आज हमारा थर्मोस्टैट किस मूड में है। अभी बाहर 68 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर हो रहा है, स्काई जो है काफी हद तक क्लियर है। गुड न्यूज ये है कि अगले 24 आवर्स में देर इज 0 मिलीमीटर्स का रेन प्रिडिक्टेड। सो अम्ब्रेला को आज वर्क फ्रॉम होम करने दो। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी सिर्फ 3 मिलीमीटर्स की, मतलब जमीन ने एक सिप पिया और बारिश बंद हो गई। आज का टेम्परेचर जो है ना वो 66 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच में है, लेकिन ये ध्यान रहे कि फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो 88 डिग्री तक जा सकता है, ऐसा फील हो सकता है। मतलब वेदर जो है वो जैसा है उसे थोड़ा सा हॉट फील हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज का जो हाई है वो कल से काफी ज्यादा है। कल मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा था 77 डिग्री फारेनहाइट तक और आज जाने वाला है 88 डिग्री फारेनहाइट तक। तो अगर सुबह सुबह हुडी पहनकर बाहर निकले हो तो शाम तक उस हुडी को लेकर घूमना पड़ेगा क्योंकि शाम तक आते आते गर्मी लगेगी। इसीलिए लेयर के प्लेयर बनने को मैं कहती हूँ तुम्हें, और साथ में पानी पीते रहना जरूरी है। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, सनग्लासेस अपने रेडी रखना, साथ में SPF 50++++ वाला सनब्लॉक भी लगाकर बाहर जाना। इट्स अ परफेक्ट डे टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट। साथ में अगर फ्रेंड्स के तुम कॉफी या चाय एंजॉय करना चाहते हो, फैमिली के साथ पिकनिक जाना चाहते हो, इट्स अ गुड डे फॉर दैट। या फिर अकेले यूं निकल पड़ना चाहते हो कुछ एरेंड्स रन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दैट्स आल्सो अ गुड प्लान। फिलहाल प्लान ये है कि तुम जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स प्ले करने, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स का टाइम हो चुका है मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले स्पेन के सेउटा रीजन में ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स मोस्टली फ्रॉम मोरक्को कोस्ट के थ्रू टेरिटरी में पहुंचे हैं, जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये इशू इमिग्रेशन, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और बॉर्डर पॉलिसीज को लेकर डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। नवजुबर यूएस में पढ़ रहे या पढ़ने का प्लान बना रहे लोगों को ये सुनना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस एडमिनिस्ट्रेट एक प्रपोज्ड फी कंसिडर कर रहा है जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि ओपीटी प्रोग्राम से लिंक्ड हो सकती है। अगर इम्प्लीमेंट होती है तो ग्रेजुएशन के बाद जॉब सीख करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मेनी इंडियंस पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल ये प्रपोजल स्टेज में है, इसीलिए अपडेट्स का वेट किया जाएगा। एंड लास्टली, इंडिया में पार्लियामेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक सेल्फी वीडियो शेयर करके कहा है कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एग्जाम सीजन का सबसे बड़ा विश तो वैसे भी यही होता है कि पेपर्स लीक ना हो, बस सबको आंसर्स अच्छे से आते हो। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी सुनोगे तो मिर्चीदार बैंगर्स। ऑल्सो कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virba, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: हाँ जी कौन?
3: हाँ जी कौन?
4: हेलो, किससे बात करनी है?
3: किससे बात करनी है?
4: भैया किससे बात?
3: अबे किससे बात करनी है?
4: भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला?
4: पागल
3: पागल। अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
5: इको आ रहा है, इको।
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो। जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
4: भैया
3: नंबर चेक के मिला।
4: हेलो
3: हेलो।
4: भैया
3: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
4: पागल
3: कहीं का।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
4: रवि है।
5: रवि रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी।
4: कुकड़ू को भाई
5: बहुत परेशान कर दिया आपने
4: भाई।
5: आप खत्म कर दो यार।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
6: मिर्ची फ्रेश माल।
7: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और क्रिकेट फैंस थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, हमारे यंग बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी इज मेकिंग सम सीरियस नॉइज। आईसीसी T20I रैंकिंग में उन्होंने एक मैसिव 230 प्लेस का जंप मारकर नंबर 48 तक एंट्री ले ली है और सोशल मीडिया फुल ऑन सेलिब्रेशन मोड में है। उनके फैंस कह रहे हैं नंबर 1 तो बस टाइम की बात है। कुछ लोग उन्हें इंडियन क्रिकेट का न्यू ओजी भी बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़का जो है ये T20 पर राज कर सकता है। अब फ्यूचर का प्रेडिक्शन तो किसी के पास क्रिस्टल बॉल से नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर है कि टैलेंट जब हार्डवर्क से मिलता है तो स्कोरबोर्ड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वाह वाह, क्या लाइन कही है मैंने। एंड ऑनेस्टली हमें तो बस इतना चाहिए कि टीम इंडिया खेले और सिर्फ ट्रॉफीज और कप्स नहीं बल्कि दिल भी जीती रहे। और इसी बात पर एक स्पार्कलिंग रिमाइंडर मैं तुम्हें दे देती हूँ, तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुमको मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। साथ में तुम्हें 0% डिडक्शन भी मिल रहा है अगर तुम ओल्ड गोल्ड जो है वो एक्सचेंज कराते हो। इट हैज टू बी अबव 18 कैरेट्स। ऑफकोर्स इस सब पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, कहां नहीं होती है लाइफ में। और फिलहाल लेते एक छोटू सा ब्रेक, मिर्ची दार बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ। यू गो एंड चेक आउट माई सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: Akkadi maadiya fere kuri.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: A very happy birthday to you. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर आज 31st of July को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम अकेले नहीं हो जो आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हो। तुम्हारे साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं, उनकी लिस्ट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। आज है बर्थडे द जेके रोलिंग का, जिन्होंने हमें हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया दी है। और अगर तुमको भी लगता है कि मंडे को डिसअपियर करने वाला स्पेल कहीं मिलना चाहिए तो मुझे भी बता देना प्लीज। और आज बर्थडे है द बिलियनर एंटरप्रेन्योर मार्क क्यूबन का, तो कौन जाने कल तुम्हारा स्टार्टअप चल पड़े और तुम भी बिलियनर बन जाओ। म्यूजिक लवर्स के लिए रैपर लिल उजी वर्ट भी आज ही इस धरती पर प्रकट हुए थे। और अगर प्लेलिस्ट के बिना तुम्हारा दिन स्टार्ट नहीं होता है तो आई हैव गॉट सम अमेजिंग सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर यू। सारे के सारे एकदम मिर्ची दार बैंगर्स है। साथ साथ में एक्शन फैंस के लिए वेस्ली स्नाइप्स का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। और टीवी लवर्स को याद ही होगा डीन केन, जिन्होंने सुपरमैन का आइकॉनिक रोल प्ले किया था। और पार्टी तब कंप्लीट होती है जब डीजे आ जाता है। हैप्पी बर्थडे टू द लेजेंडरी फैट बॉय स्लिम एज वेल। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है तो मेरी तरफ से एक बड़ा सा हग, लोड्स ऑफ लव एंड दुआ ये है कि अगला साल हेल्थ, हैप्पीनेस और बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आए तुम्हारे लिए। और बर्थडे सेल्फीज अपलोड करने के साथ साथ मुझे भेज भी सकते हो, मुझे टैग भी कर सकते हो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: और आखिर वो टाइम आ ही गया है जब हम पता करते हैं कि गोल्ड का लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है. मेरा नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,050 $4,050 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ, बिना किसी हिडन फी ने, बिना किसी इंटरेस्ट के आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, नेचुरल सर्टिफाइड विद लाइफ टाइम वारंटीज. आइए राज ज्वेल्स के साथ आज खूबसूरत सी ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के. ज्वेलरी आपके साथ आज घर जाएगी और 9 किश्तों में पैसे हमारे पास आएंगे. सो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: यू वाइबिंग विद मी बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और टाइम हो चुका है मिर्ची आवा का 3 का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले इंडिया में मेटा एक बार फिर से डिस्कशन में है। रिपोर्ट्स के हिसाब से सेंटर ने मेटा के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को दोबारा बुलाया है आफ्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फेसबुक पोस्ट वॉज ब्रीफली रिस्ट्रिक्टेड। गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट पर पॉलिसी और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मांगी है। एंड फाइनली मिडल ईस्ट से एक मेजर अपडेट, रिपोर्ट्स के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने रीजनल मिलिट्री एक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन अनाउंस की है और सोशल मीडिया पर कुरान की एक वर्स भी शेयर की है और साथ ही ये भी कहा है कि वो एस्केलेशन नहीं चाहते हैं लेकिन अग्रेशन का रिस्पांस देंगे। सिचुएशन फास्ट मूविंग है और डेवलपमेंट्स पर दुनिया की नजर बनी हुई है। और लास्टली इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब वो न्यूयॉर्क विजिट करेंगे उनके साथ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस रहने वाली है। ये स्टेटमेंट उन्होंने आईसीसी वारंट और न्यूयॉर्क सिटी मेयर ज़ोरान ममदानी के कमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। ये इशू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और लीगल प्रोसेसेस को लेकर काफी डिस्कशन में बना हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर मुझसे कनेक्ट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La fiutba la murga. Milchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा नहीं वही
3: मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू राशि जोन का पहला पार्ट, जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं एरीज से लेकर वर्ग तक की राशियों की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज या वीकेंड में कोई वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी या सरप्राइज मिल सकती है, शायद उसका असली फायदा बाद में समझ आए। सो पेशेंस इज गोइंग टू बी योर सुपर पावर दिस वीकेंड। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि ऋषभ राशि, ऑप्शंस बहुत हैं, बस सबकी एडवाइस सुनने की जरूरत नहीं है। आज अपनी इनर वॉइस को अपनी लाइफ का सीईओ बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। लकी कलर फॉर यू इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 5। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, डे ड्रीमिंग अच्छी बात है, लेकिन स्टंट मोड में हमेशा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए लाइफ में, आज तुमको वही करना है। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 27। कैंसर यानी कर्क राशि, सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है भाई, अपने लिमिट्स जानते हो तो उनको रिस्पेक्ट करना भी सीखो, वीकेंड ज्यादा फन रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज आइवरी, लकी नंबर इज 11। लियो यानी कि सिंह राशि, लाइफ तुम्हें एक नए डायरेक्शन में ले जा रही है, बॉस चिल मारो, कभी कभी GPS रीराउट करता है और डेस्टिनेशन और बेटर हो जाती है। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, ऑफिस गॉसिप आज तुम्हारे आसपास हो सकती है, लेकिन सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना, कार्मा हैज एक्सलेंट मेमोरी, ये याद रखना। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 2। एंड ये था राशि जोन पार्ट 1 मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लेट मी रिमाइंड यू, राशि में तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन मिलता है, डेस्टिनेशन पर तुम्हें खुद पहुंचना पड़ता है। अभी पहुंचते हैं मिर्चीदार बैंगर्स की तरफ, मिर्ची मॉर्निंग्स पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हाँ जी, वेलकम बैक। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम बातें करने वाले हैं राशियों की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में आज कूल रहना। गरम चाहे तो ठीक है, गरम टेम्पर नहीं होना चाहिए। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो काम पेंडिंग है उसे आज ही टैकल करो। एक्शन इंप्रेस करता है, ओवरथिंकिंग डिप्रेस करती है। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, हर चीज का एक रीजन होता है। आज कंपैरिजन छोड़ो और अपनी लेन में फुल स्पीड में चलो। लकी कलर इज मस्टर्ड येलो, लकी नंबर इज 21। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज हर चीज को ओवर एनालाइज मत करो। कभी कभी दिमाग नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बना देते हो यार, चिल मारो। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे, लकी नंबर इज 30। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, छोटा काम आज निपटा दो वरना वीकेंड बोलेगा सरप्राइज, मैं तो अभी भी टू डू लिस्ट में पड़ा हुआ हूँ। लकी कलर फॉर यू इज आक्वा ब्लू, लकी नंबर इज 6। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, अगर गलती हो जाए तो एक ऑनेस्ट सॉरी बहुत पावरफुल होता है। स्माइल फ्री है, उसे जेनरसली यूज करना चाहिए। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 24। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे अपने साथ ही रखो सोशल मीडिया पर भी। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची खा
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
7: मिर्ची फ्रेश माल
8: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: एक बात बोलूं, गर्मा गर्म चाय और मिर्ची मॉर्निंग्स यूं खत्म हो जाते कि पता ही नहीं चलता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और बस आज का ये शो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग ट्रैवल अपडेट देकर जाती हूँ तुम्हें। लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक US पासपोर्ट अब दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट में 10th पोजीशन पर आ गया है। ये उसका पिछले 10 सालों का लोएस्ट रैंकिंग है। एक वक्त था जब ये टॉप 5 में कंफर्टेबली ट्रैवल किया करता था और अब रैंकिंग थोड़ी सी शफल हो गई है। इस लिस्ट में सिंगापुर ने फिर से टॉप स्पॉट होल्ड किया है। मतलब पासपोर्ट्स की भी ये रिपोर्ट कार्ड जो है ना वो आती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेकेशन का मूड रैंकिंग से नहीं बल्कि अप्रूव्ड लीव से होता है और लीव डिसाइड करते हैं तुम्हारे बॉस, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। तो अपनी लीव तुम प्लान करो और अभी मैं यहाँ से लीव कर जाती हूँ। आज साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर ऑफिस ड्राइव, वर्क फ्रॉम होम या फिर ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मुझे सुन रहे थे। यू मेड माई मॉर्निंग्स अ लिटिल मोर मिर्चीदार। यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, बी गुड, खाओ पियो ऐश करो और मिलूंगी तुम्हें अब मैं मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय है। और अगर मुझे मिस करोगे तो मुझसे बात कर लेना। इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: Purani Zamani ki one of the most beautiful and most talented actress Mumtaz. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hu Charu aapke saath. Aur suniye podcast mein unhone apni family ke bare mein kya share kiya tha.
2: Very orthodox family, that is one of the reason my parents separated. Because when my father came from Iran, my mother became too modern and my father was very simple person. He had money. वो हिस्टोरिया होटल उनकी थी और ड्राई फ्रूट की बिजनेस थी उनकी. तो ही वाज वेल ऑफ बट ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स. उनको नहीं पसंद था कि उनकी बीवी मॉडर्न हो. वो ना इत्तफाकी हो गई, दे वर नॉट गेटिंग ऑन एंड माय मदर वाज एंजॉयिंग टू ड्राइव कार एंड जीन्स पहनने लगे. वो तो गेट ऑन नहीं हुए. सो माय फादर सेड नो आई कांट टेक दिस, लेट्स हैव अ डिवोर्स. तो डिवोर्स में तो माय मदर सेड कि नहीं, मनी नहीं चाहिए, उसके अवज में मुझे मेरी बेटियां दे. तो वैसे भी मेरे फादर को लड़के चाहिए थे. वो समझते थे लड़के होंगे तो अच्छा है, लड़कियां शादी करके चली जाए, ऑर्थोडॉक्स. तो मेरी मम्मी ने कहा कि दो लड़कियां हैं, आप दूसरी शादी करेंगे तो शायद आपको लड़का हो जाएगा, तो लड़के मैं ले लेती हूँ. तो माय फादर सेड ओके. तो माय मदर ब्रॉट मी अप, माय ग्रैंडमदर ब्रॉट मी अप, माय आंट ब्रॉट मी अप.
1: और इसीलिए मुमताज शायद बन गई एकदम बेबाक और बिंदास. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हाँ जी बोलिए।
4: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
3: आप बोलिए ना।
4: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
3: कॉल मैंने किया है। हेलो।
4: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार? मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
4: नींद में है क्या?
3: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर,
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है।
3: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो। हाँ बताइए।
4: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
4: हेलो।
3: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार? मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
3: तो आप गाड़ी चलाइए। नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
4: फोन नहीं कर रहा अभी।
3: आप देखिए बदतमीज से बात मत करिए, आप समझ गए? मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ मैं।
4: चप्पल
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। फोन
4: जीना आराम कर दिया तुम जैसे,
3: जीना बता रहा हूँ यहाँ से। भाग इस बार अगर कर दिया ना, बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
4: फोन आ रहा है, मेरी आ रहा है फोन, जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: पुराने जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, फिरोज खान एंड मुमताज जी। एक टाइम पे जब ये साथ में काम किया करते थे, इनके अफेयर के रूमर्स भी उड़ा करते थे। इस बारे में सुनिए एक रीसेंट पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: देखिए, फिरोज खान को तो पूरी दुनिया की औरतें प्यार करती थी, बट वी वर अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो उनको जेवीएस वाडिया के जमाने से जानती हूँ, जब उनकी खुद की एक एंग्लो इंडियन गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और फिरोज खान और शमी कपूर के अलावा मुझे आज तक फिल्म लाइन में कोई खूबसूरत हीरो लगा नहीं। इवन टुडे आई थिंक ये दो ही पर्सनालिटी थी जो बहुत हैंडसम थी हमारी फिल्म लाइन। काफी लोग थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है ना, मुझे इन दोनों से लगती थी व्हेन आई वाज वर्किंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी आपको अट्रैक्टिव लगे उसके साथ अफेयर हो। मेरा फिरोज के साथ अफेयर कभी भी नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई वाज फिजिकली अट्रैक्टेड टू हिम। अफेयर वफेयर कुछ नहीं हुआ मेरा उनके साथ।
1: चलो, क्लैरिटी मिल गई, अच्छी बात है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: लोग ऐसा कहते थे कि राजेश खन्ना मुमताज जी के बीच में भी रिलेशनशिप था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप था, सुनिए पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: लोगों का क्या है, मैं आपसे एक बात बताऊं, जो भी हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती है ना, जब वो 8-10 फिल्में एक साथ करते हैं, सो दे नो ईच अदर सो वेल, दे बिकम ऑटोमेटिकली वेरी क्लोज, वो एक शाइनेस निकल जाती है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि इनका कुछ चक्कर है, तो वो इंसान क्लोज हो जाता है, वो केमिस्ट्री जो हो जाती है, जिसकी वजह से जब एक दूसरे से बात करते हैं, हाथ गले में डालते हैं, कमर में डालते हैं, जैसे धक्का मारना हो, तो वो डरते नहीं है एक दूसरे से, नो फॉर्मेलिटीज, सो दे बिकम लाइक अ फ्रेंड। तो वो था मेरा पार्टनर के साथ, मैंने कितनी 10-15 पिक्चर लिखी और एक भी फ्लॉप नहीं हुई, हमारे सितारे मिलते होंगे साथ, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, अफेयर नहीं था मेरा। एंड वी वर नेबर्स, मेरा घर और उनका घर आजू बाजू में ही था, और अंजू तो पहले से उनके साथ थी। नो ही वॉज नेवर इन लव विद मी, ही वॉज विद अंजू व्हेन आई वाज वर्किंग।
1: सही बात है भाई, केमिस्ट्री सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ी ना होती है, अच्छी गहरी सच्ची दोस्ती से भी तो होती है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज। Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज के पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जींस विद चारू ओनली

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: क्या ये बात सच है?
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि शशि कपूर साहब ने एक बार मुमताज जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
3: यस, सच्चा झूठा में ही डिड, एवरीबॉडी रिफ्यूज्ड विद मी। दारा सिंह की हीरोइन थी तो मुझे नहीं काम करना। दैट टाइम ही टुक 2 lakhs टू गिव हिम फॉर साइनिंग अमाउंट। ही शशि जी सेड नो, चेंज मुमताज। He said sorry. He walked out. Why only Shashi Kapoor bichara? Whole industry refused.
2: तो क्या ये एक्टर्स जिन्होंने मुमताज जी के साथ काम करने से मना किया, इन्होंने कभी आके उनको ऐसा बोला कि sorry या उस टाइम ऐसा हो गया था?
3: नहीं, ईगो होता ना, मर्द लोगों का ईगो बहुत होता है। They are never wrong. They are always right. And that doesn't really matter. As far as they worked with me, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काम तो किया। अब वो खोदते बैठो तो सुरंग का एंड ही नहीं होता, चलता है, goes on and on in life।
2: क्या बात है, इस बात से तो यही समझ में आता है कि सोच भी बड़ी रखनी चाहिए और दिल भी बड़ा रखना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: Late 60s ki one of the most talked about love stories, Shammi Kapoor ji and Mumtaz ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. और सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि कब उन्होंने शम्मी कपूर जी को पहली बार देखा था.
2: जब मैं दिल देखी देखो की शूटिंग पे गई थी मेरी बहन के साथ शूटिंग देखने के लिए, जब मैं 10 स्कूल से छुट्टी 10-11 की होंगी, मेरी बहन खुद 13-14 की थी, बहुत छोटी थी, तो मैं जाके जब सेट पर बैठी तो मैंने उनका गाना चल रहा था तो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छे लगे शम्मी जी. तो मैंने कहा मलका मेरे को इससे शादी करना है. तो मेरी बहन बोली पागल, उसकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम है गीता बाली. मैंने बोली हो गई शादी? मैंने यहाँ हो गई, मगर मुझे इसी टाइप के आदमी से शादी करना है. बोली ठीक है इंशाल्लाह अगर तेरे नसीब में होगा हो जाएगा. तो मैं 10 साल की उम्र से उनको पसंद की थी, ऐसा नहीं कि अभी की थी.
1: ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद. राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.
3: यूं ही तुम

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो,
4: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी,
4: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटा।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: मुमताज जी ने शम्मी कपूर जी को पहली बार दिल देके देखो फिल्म के सेट्स पर देखा था और पहली नजर में प्यार हो गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन तब सिर्फ मुमताज को हुआ था, वो भी बचपन वाला प्यार, क्योंकि तब वो सिर्फ शायद 11 साल की थी और उस फिल्म के सेट्स पर आई थी क्योंकि मुमताज जी की जो बहन थी वो भी उस फिल्म में एक रोल कर रही थी। इसके 10 साल बाद मुमताज जी को मौका मिला शम्मी जी के साथ ब्रह्मचारी फिल्म में काम करने का। सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: जब मैं बड़ी हुई फिर मुझे ये पिक्चर मिली, उस वक्त गीता जी गुजर गए थे, गीता बाली जी गुजर गए, तो he liked me, I liked him. We were there with each other for 2-3 years, I would say at least 3 years. 3 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि I love you and I want to marry you. तो मैंने कहा okay, I'm ready to marry you. Then उन्होंने कहा कि काम तुम नहीं कर सकती, और मैं इतनी ambitious थी, और वो शमी जी 17 साल कुछ बड़े थे मुझसे, और मेरी मम्मी बोलती थी बहुत बड़ी एज है और बहुत लड़कियां इधर उधर पीछे हैं, तुझे खुश नहीं रखेंगे वो। तो मैं शमी जी को बोलती थी लीव हर, आई एम गोइंग टू मैरी यू, मगर काम करूंगी। तो शमी जी ने बोला काम नहीं कर सकती, बोले हमारे कपूर फैमिली के अंदर बहू नहीं करती है फिल्मों में, और उस जमाने में नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा यू कांट, तो मैंने कहा देन शमी जी ओन वर्क, बिकॉज आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क एंड आई वॉन्ट टू बी समथिंग इन माई लाइफ।
1: वेल, फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरीज में से एक है मुमताज जी और शमी जी की लव स्टोरी, और मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक है इन दोनों पे पिक्चराइज्ड ये गाना। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your Mirchi.
1: मुमताज जी और शम्मी कपूर जी कुछ 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। उसके बाद शम्मी जी ने मुमताज जी को प्रपोज भी किया, मुमताज जी ने हाँ भी की, लेकिन जब ये कंडीशन आई कपूर खानदान की तरफ से कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती, तब मुमताज जी ने मना कर दिया, क्योंकि तब उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी और वो काफी कुछ अचीव करना चाहती थी। लेकिन जो भी वजह रही हो, रिश्ता टूटता है तो दिल भी टूटता है। एक पॉडकास्ट में सुनिए उस टाइम के बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था कि किसने उनको संभाला, हिम्मत दी।
2: माय मदर डाइड वेरी यंग व्हेन आई वाज डूइंग श्री शांताराम पिक्चर। शी डाइड देन डिलीवरिंग माय वन ऑफ माय ब्रदर। आई वाज ब्रॉट अप बाय माय आंट। माय रियल मदर वाज माय आंट। तो आंटी मुझे बहुत प्यार करते थे, माँ से ज्यादा प्यार करते थे, और वो हमेशा मुझे देखते ही बोलते थे, क्या हुआ, तो खुश है ना? मैं यहाँ ना खुश हूँ, तू लग रही नहीं है। एंड मेरी सिस्टर थी, मेरी बहन वाज ऑलवेज लाइक अ रॉक, माय आंट वाज लाइक अ रॉक। एंड देन आई हैड नो टाइम टू थिंक अबाउट वन थिंग। आई वाज सो बिजी, 7 to 2, 2 to 10, 7 to 2, 2 to 10, till I got married. तो अभी बैठ के किसे गाने याद करूं, डायलॉग याद करूं कि क्या अभी क्या करूं? So I was okay. कितना भी इंसान प्यार करे, वो जख्म भर तो जाते ही है ना।
1: वो एक शेर था कि वक्त हर जख्म को भर देता है, कुछ भी कीजिए याद रह जाती है हल्की सी चुभन की हद तक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना, ना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
3: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी
4: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल
3: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: मुमताज जी ने अपने करियर में दो बहुत बड़ी फिल्में रिजेक्ट की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वेल, एक रिजेक्ट की थी पैसे की वजह से और दूसरी रिजेक्ट की थी प्यार की वजह से, एक्चुअली जो प्यार पूरा ना हो पाया उसकी वजह से। ये फिल्में थी सीता और गीता और अंदाज। सुनिए पॉडकास्ट में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था।
2: देखिए, अभी 6.5 लाख में लेती थी उस जमाने में, अब 2 लाख में मैं कैसे करूँ। रमेश जी ने मुझे बोला 2 लाख, 1 लाख गीता का, 1 लाख सीता का। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक आई विल वर्क इन 2 लाख। गीता और सीता तो मैंने प्राइस के लिए रिफ्यूज की थी, और वो दूसरी पिक्चर जिसमें हेमा जी थी, वो गाना है ना दिल जिसे दो, अंदाज, बिकॉज शमी कपूर वाज द हीरो।
3: तो दैट इज द रीजन आई डिडंट वर्क, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी वेल रिटन, बट दैट इज द ओनली रीजन, देयर वाज नो अदर रीजन।
2: मुझे ये दो पिक्चर के बाद में लोगों को पता चल गया फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मुमताज और शमी जी, मैं शमी जी तो बेचारे कभी मना नहीं किए, झूठ क्यों बोलो, मुमताज शमी जी के साथ काम नहीं करती, इसलिए मुझे ऑफर आए ही नहीं।
1: वेल, इन केस यू डोंट नो, तो मुमताज जी और शमी जी 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। शमी जी ने शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती। ये शर्त मुमताज जी को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया, और इसीलिए उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बिटर नोट पे एंड हुआ था। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: गोली मार भेजे मैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu. Only on Mirchi.
1: बोल्ड बेबाक बिंदास मुमताज जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मुमताज जी पुराने जमाने की वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने बिकिनी पहनने की बोल्डनेस दिखाई थी फिरोज खान की फिल्म अपराध में। पर क्या उसके बाद बाकी के और फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स ने उनको ऐसे इंसिस्ट नहीं किया कि उनकी फिल्म में भी वो बिकिनी पहने? सुनिए एक पॉडकास्ट में इसके बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मुझे वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि दैट टाइम आई वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, सो आई कुड अफोर्ड टू से नो, मुझे नहीं पहनना। और मैंने फिरोज को प्रॉमिस भी किया था कि फिरोज मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, उसके बाद मैं कभी बिकिनी नहीं पहनूंगी। फिरोज खान वाज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, व्हाट अ लेंस की आईज थी वो इंसान की। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे पेश करूंगा, अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं काट दूंगा। मैंने बोला प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फिगर में, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ हैवी ईरानियन थाइस, सो आई हैड कॉम्प्लेक्स कि मैं मोटी लगूंगी बिकिनी में। तो उन्होंने मुझे रैशेज दिखाया, मैंने बोला नहीं फिरोज, आई एम हैप्पी, यू कैन कीप इट। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, आई नेवर वोर बिकिनी। आए थे प्रोड्यूसर, आई सेड नो।
1: भाई बिकिनी पहनकर उस टाइम पे मुमताज जी ने शायद एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिशनल कपड़ों में, साड़ी में भी वो उतनी हॉट, एक्चुअली उससे ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो,
3: हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
2: हेलो हेलो,
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया मेरे जाने वाले थे, बजाने वाले थे।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Rani Jeans with Charu, only on

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your mischief.
1: पुरानी हिंदी फिल्मों में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट कौन सी ड्रेस ने बनाई थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसे तो देखिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट की हम बात करें तो वो है ब्रह्मचारी फिल्म में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने में जो मुमताज जी ने साड़ी पहनी थी ऑरेंज कलर की, और एक्चुअली जिस तरह से पहनी थी उसकी बात ही कुछ और है। वेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया, और एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने इसके बारे में क्या कहा था।
2: आई थिंक लियो लोग का शेर जो है उनके ऑरेंज ही होते हैं फेवरेट, तो मेरा भी फेवरेट था, लेकिन भानु अथैया डिड हार्ड वर्क, शी इन्वेंटेड समथिंग वेरी डिफरेंट जो आज भी लोग कोशिश करते हैं कि पहने वैसे, तो सहरा उनको जाता है, मेरा तो सिर्फ कलर था, बट शी वाज द वन हु वर्क्ड हार्ड।
1: अच्छा एक और चीज जिसके लिए मुमताज जी जानी जाती हैं वो उनकी डांसिंग, तो क्या उनको ऐसे लिबर्टी मिलती थी कि वो इम्प्रोवाइज कर सकें, अपने स्टेप्स डाल पाएं?
2: हमारे जमाने में हमको वो सब मिलता भी नहीं था, इधर सीखो इधर करो, सीखो इधर करो, बिकॉज आई वाज सो बिजी। जो भी मास्टर ने सिखाया वो कर लिया हमने, बस जहाँ कैमरे में रखते थे डायरेक्टर साहब के कि यहाँ पर वी हैव टू डू दिस, सीख लेते थे और कर देते थे, दैट्स इट। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, वी आर वेरी वेरी ओबीडियंट, करना पड़ता था हर चीज, कोशिश यही रहती थी कि जो भी करो अच्छा करो।
1: अच्छा उसे अच्छा नहीं उसे कमाल कहते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu only on Mirchi.
1: आजकल तो जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो स्टार्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके मेकअप मैन, उनके हेयर ड्रेसर, उनके पर्सनल ट्रेनर सब उनके साथ रहता है। वैनिटी वैन में अच्छा खासा घर बसा हुआ होता है। लेकिन एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि पहले के टाइम में जब ये फैसिलिटीज नहीं होती थी तब इनडोर और खास करके आउटडोर शूटिंग वगैरह में कैसे सब मैनेज होता था।
2: वैनिटीज नहीं थी लेकिन हमारा मेकअप मेरा परमानेंट था, हेयर ड्रेसर मेरी परमानेंट थी, गाड़ी मेरे पास अल्लाह के फजल से थी। दे यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग, दे मेक मी रेडी इन माय बंगलो एंड आई यूज्ड टू गो फॉर शूटिंग। हाँ, इतनी कंफर्ट नहीं थी। अगर आपको बाथरूम जाना हो जंगल में तो लड़कियों को ले जाना पड़ता है कि पर्दा करो तो मैं जाऊँ। कैसे जाएंगे, जय शिवी शंकर का देखिए ना, कहाँ जाऊँ मैं बाथरूम। बट देन आई टोल्ड माय ड्राइवर यू कम एंड देन माय हेयर ड्रेसर केम एंड वन ग्रुप डांसर। साड़ी लेके जाके दूर जाओ जाके फिर एक वो पकड़ रहे, वो पकड़ रहे अमंग द गर्ल्स। सो ऑल द थ्री गर्ल्स आई यूज्ड टू डू पीपी देन आई यूज्ड टू से यू वांट टू गो, अरे यस यू वांट टू गो। फिर बाद में कौन उतना चल के आएगा। ऐसा हमारा हाल था। अभी तो लोग बहुत कंफर्टेबल है। वेरी लकी आई वुड से टू हैव वैनिटी। हमारे यहाँ तो गर्मी में मरो, एयर कंडीशन कहाँ से मिलेगा तुमको आउटडोर में।
1: सही बात है। इसी बात पे जय जय शिव शंकर गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज। Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu. Only on Mirchi.
1: भाई मुमताज जी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर एज अ टीनेजर भी उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए, फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर रोल, साइड हीरोइंस, इस तरह के रोल भी किए। उसके बाद बहुत सारी एक्शन या स्टंट फिल्में जो बनती थी उनमें काम किया था, जिन्हें तब बी ग्रेड फिल्में कहा जाता था। और इसीलिए ए ग्रेड फिल्मों के बहुत सारे एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। सुनिए इस बारे में एक पॉडकास्ट में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: बिगिनिंग में तो मैं कुछ थी ही नहीं, मुझे सारे हीरोज ने रिफ्यूज किया था कि हम मुमताज के साथ काम नहीं कर सकते, ये फैंटेसी पिक्चर की हीरोइन है, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, सिवाय एक दारा सिंह के, सब ने रिफ्यूज किया। उसके बाद में जब राजेश खन्ना ने मेरे साथ काम किया बंधन में, उसके बाद में तो मैं कोई हीरो छोड़ी ही नहीं, सबके साथ काम किया।
1: और इसीलिए जब मुमताज जी की फिल्म में कोई नया एक्टर होता था तो वो कभी मना नहीं करती थी।
2: जब अमित जी इतने बड़े हीरो नहीं थे तो रलन जी ने कहा मुमताज तुम इनके साथ काम करोगी, मैं बोली जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मुझे काम चाहिए था और जब मुझे लोग रिफ्यूज करते थे मुझे कितनी तकलीफ होती थी, तो मैं बोली ऑफ कोर्स ही इज हैंडसम लुकिंग मैन एंड ऑल दैट, तो मैंने अमिताभ सर के साथ बंदे हाथ भी की। मैंने कभी किसी हीरो के साथ काम करने के लिए रिफ्यूज नहीं किया, मैंने कितने नए नए के साथ भी की हूँ आप देख लीजिए।
1: बहुत ही ऑसम इंस्पायरिंग टाइप की जर्नी रही है इनकी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: भाई गाना पसंद आने के लिए इतने प्रोसेसेस तो नहीं होते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगर एंड कंपोजर अमाल मलिक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रखती हूँ यार। सो बेसिकली इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म आवारापन 2 में अमाल मलिक ने अपना म्यूजिक दिया है और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी कुछ दिनों पहले जो रिलीज हुआ जिसको लेके अरिजीत सिंह के कमबैक की भी बात हुई थी। वेल आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, बट फिलहाल अमाल मलिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई उनके इस गाने उस एल्बम को लेकर उनके जो राइवल लोग हैं ना वो पेड पीआर कर रहे हैं और उनके गाने को उनके साउंडट्रैक को अटैक कर रहे हैं। बट यार अमाल अगर ये बात सच है तो मेरे पास तो पैसा नहीं आया यार, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये गाना कुछ खास समझ नहीं आया। एंड उससे भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज द थिंग जो आपने कहा। सो अकॉर्डिंग टू अमाल मलिक एवरी सॉन्ग नीड्स टाइम टू ब्रीद। उनके हिसाब से इंसान के सिस्टम तक दिल तक पहुंचने के लिए ना उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ऑडियंस के बीच।

0: Mechi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mechi, burga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,9,83।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका मुर्गा।
2: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, हनुमान जी के बिना रामायण पूरी हो सकती है नहीं ना, तो फिर ये ट्रेलर कैसे कंप्लीट हो गया? वेल, मैं बात कर रही हूँ नमित मल्होत्रा प्रोडक्शन एंड नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मैग्नम ओपस रामायण के बारे में, जिसका ट्रेलर कल आया। एंड भाई, इस ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया है, यानी कि सुबह के 4:15 पे। वैसे मूवी में रणबीर कपूर बने हैं राम, साई पल्लवी बनी है सीता, यश बने हैं रावण, रवि दुबे लक्ष्मण एंड सनी देओल लॉर्ड हनुमान। लेकिन भैया, ये जो ट्रेलर 4 मिनट का आया है, उसमें एक जगह भी हमारे पवन सुत हनुमान की झलक तक नहीं दिखाई गई है। ना टीजर होगा, ना मोशन पोस्टर। संजय लीला भंसाली के प्लान्स कुछ अलग ही चल रहे हैं उनकी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के लिए, जिसमें रणबीर कपूर के साथ साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल्स में नजर आएंगे। सो अगर रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली कुछ हटके प्लान कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल प्रमोशनल एसेट क्रिएट करने की प्लानिंग की है, जिसको वो अगस्त तक रिवील भी करेंगे। और जैसे ही ये डेट्स मुझे पता चलेंगे आपको जरूर बताऊंगी। दायरा, नहीं, इंसान की जिंदगी वाले दायरे की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल, जो एक क्राइम थ्रिलर है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मूवी का फर्स्ट लुक इज ऑलरेडी आउट एंड इसको इसका रिलीज डेट भी मिल चुका है, विच इज 18th of September 2026। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल, इस बात में एक बार फिर से विश्वास दिला दिया है आप में से ही किसी एक इंसान ने। सो बेसिकली इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म ची। हाँ, यू नो द ड्रिल। आपको मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजना होता है, देन आई कॉल यू एंड प्ले दिस गेम विद यू, जिसमें अगर आप अव्वल करते हैं तो डेफिनेटली आपको मिर्ची फिल्म ची का टैग मिलता है। बट अगर नहीं हुआ तो फिर वो गेम आगे किसी और के साथ खेला जाता है। सो सबसे पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निर्मल जी। क्या आप मेरे साथ ये बॉलीवुड गेम खेलेंगे?
3: हाँ मैम, बहुत ज्यादा टफ पूछते हो आप, बहुत ज्यादा पता नहीं चलता।
0: नहीं नहीं, मैं कोई टफ क्वेश्चन
3: नहीं आता है, लेकिन जब नाम नहीं बता पाते ना, मुझे बहुत मजा आता है।
0: ओहो, तो देखते हैं आज आप कहाँ तक पहुँचते हैं इस गेम में। शुरू करूँ?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: करीना कपूर का जीरो फिगर किस फिल्म में था?
3: हलकट जवानी।
0: अरे नहीं, उन्होंने सबसे पहली बार अपना वेट लूज किया था फॉर दैट पर्टिकुलर फिल्म।
3: फिल्म का नाम बताना है?
0: हाँ हाँ, फिल्म का नाम बताना है आपको कि करीना कपूर का जीरो फिगर किस फिल्म में था।
3: नहीं पता मैम।
0: अब बताइए, आप तो पहले बॉल पे ही बोल्ड हो गए।
3: चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक्स टू यू टू निर्मल जी। बट कोई नहीं, अगर आप में से जो फिलहाल मुझे सुन रहा है वो इस गेम को आगे खेलना चाहता है तो MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझे इंस्टा पे ढूंढिए, मेरे DM में जाइए एंड सेंड मी योर नंबर। बाकी तो मैं ध्यान रख लूंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: हर दूसरा गाना सुपर हिट ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: फाइंडिंग मिर्ची फिलमची।
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून हूँ आप, एंड जो मुझे शो को रोज सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली पता है कि ये फाइंडिंग मिर्ची फिलमची क्या है। बेसिकली मैं हर रोज एक गेम खेलती हूँ, देयर इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आई आस्क, बट द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होता है, आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, वहां मेरे DM में अपना नंबर भेजना होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन वी स्टार्ट द गेम। सो कुछ देर पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे निर्मल जी, अब मेरे साथ कौन है?
3: मयंक गुप्ता।
0: ऑल राइट, तो आपको क्या पता है कि करीना कपूर खान ने किस फिल्म के लिए अपना जीरो फिगर बनाया था?
3: टशन।
0: क्या बात है, टशन फिल्म का कौन सा एक्टर पहले शेफ था?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो छिछोरे फोटोग्राफर बने हैं?
3: गरम मसाला।
0: क्या बात, गरम मसाला में इनके कुक का रोल किसने प्ले किया था?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल की फिल्म जिसमें उनका नाम बाबू राव है?
3: हेरा फेरी।
0: हेरा फेरी 1 की फीमेल एक्टर का नाम?
3: तब्बू।
0: तब्बू की फिल्म विद करीना कपूर?
3: तब्बू की फिल्म विद करीना कपूर,
0: नहीं आता है तो एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं आता है फिर।
3: Just trying.
0: सर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कॉल पे।
3: नहीं आता फिर।
0: ऑल राइट, बट इट वॉज ग्रेट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड प्लेइंग दिस गेम, थैंक यू सो मच।
3: ओके,
0: इतने ताबड़तोड़ सवालों का जवाब देना भी कोई छोटी बात नहीं होती, इसलिए मयंक जी आज आप बने हैं हमारे
1: मिर्ची फिल्मची।
0: कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आपको इस गेम में मजा आया तो यू नो द

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो
3: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन
4: विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक अम्बिशियस फीमेल कैरेक्टर को लव इंटरेस्ट में तब्दील करना जरूरी है क्या?
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, बात हो रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है कि वो एक मूवी तो बनाए लेकिन उसमें हर बार वर्चस्व रहे तो सिर्फ और सिर्फ मेल लीड का। फीमेल लीड को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब उसका पर्सोना तैयार किया जाता है अम्बिशन के साथ, आइडेंटिटी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी प्लॉट एकदम से घूम जाता है और वो हीरो की लव इंटरेस्ट बन के रह जाती है। बस कुछ ऐसी ही कैरेक्टर्स की लिस्ट निकाली है आज, जिसको डिस्कस कर रही हूँ इन माय पांच का पंच की लिस्ट, जहां सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म तू झूठी में मक्कार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म नमस्ते लंदन से कटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। हां जी, जैज का कैरेक्टर जिसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ की जाती है, उसके बाद उसको विलेन बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लंदन में जीना चाहती है। बट फिर अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, कटरीना को अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है एंड इवेंचुअली वो सारी चीजों को गिव अप करके पंजाब के एक गांव में जाके सेटल हो जाती है। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पे बात करते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की, फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी। हंजी, नैना तो याद होंगी आपको। जिस हिसाब से बनी, बोले तो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एक प्रॉपर आर्क दिया गया था, उसके उड़ने दौड़ने गिरने सारी चीजों को अच्छे से विजुअलाइज किया गया था, वो क्या दीपिका पादुकोण के साथ नहीं हो सकता था? उसके एस्पिरेशंस नहीं थे, उसका फ्यूचर नहीं था, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। बट क्या ही कर सकते हैं, हिंदी फिल्म है भाई, यहां तो हीरो को ही वर्चस्व दिया जाएगा और हीरोइन को हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने वाली गुड़िया बनाया जाएगा। खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई मूवी ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिना हीरोइन के हीरो का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट नहीं हो सकता क्या?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: कसम से यार बाबू मोशाय, कभी कभी तो ऐसे ही ख्याल आते हैं क्योंकि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस चीज से प्यार है। मतलब अगर वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो उसको सस्टेन कर ही नहीं पाते ये, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मूवी उसके एम्बिशन, उसकी सारी इच्छाओं को साइडलाइन कर दिया जाता है और हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको हीरो का बस एक लव इंटरेस्ट बना के छोड़ दिया जाता है। आज कुछ ऐसी ही फीमेल कैरेक्टर्स की हो रही है बात थ्रू माय 5 का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट तू झूठी में मकार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। नंबर 2 पे हमने बात की नमस्ते लंदन से कैटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। नंबर 3 पे हमने बात की ये जवानी है दीवानी से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर 4 पे बात करते हैं अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर के बारे में फ्रॉम द फिल्म जब तक है जॉन। क्योंकि भैया जब तक मैडम शाहरुख खान से प्यार में नहीं पड़ती हैं, बोले तो समर से प्यार में नहीं पड़ती हैं, तब तक अकीरा की जिंदगी बड़ी ही इंडिपेंडेंट सी, क्वर्की सी, फ्री स्पिरिटेड सी चल रही होती है। वो एक मस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होती है जिसको समर से जैसे ही प्यार होता है वो अपनी सारी चीजें भूल के समर के पर्सनल ग्रोथ के बारे में, उसके लॉन्ग लॉस्ट लव बोले तो कैटरीना कैफ से मिलाप कराने के बारे में सोचने लगती है। एंड दिस इज हाउ शी हैप्पीली एग्जिट्स द मूवी एज वेल। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बारे में, जो इनिशियली काफी कंपीटिंग होती है। हाँ जी, वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी होती है उसके लिए काफी जद्दोजहद करती है बंदी, बट जैसे ही उसको प्यार होता है वो कॉम्पिटिशन को अबैंडन कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती है कि भैया इन दोनों गाइस में से मेरे लिए कौन सा सही है। मतलब वाजंट इट आउटराइट स्टूपिड? केयर अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Yeah. Meaty Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meaty Mirchi.
2: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो
3: मिर्ची, टॉप टॉप टॉप ट्रेंडिंग।
2: भाई, हनुमान जी के बिना रामायण पूरी हो सकती है नहीं ना, तो फिर ये ट्रेलर कैसे कंप्लीट हो गया? वेल, मैं बात कर रही हूँ नमित मल्होत्रा प्रोडक्शन एंड नितेश तिवारी डिटेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मैग्नम ओपस रामायण के बारे में, जिसका ट्रेलर कल आया। एंड भाई, इस ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया है, यानी कि सुबह के 4:15 पे। वैसे मूवी में रणबीर कपूर बने हैं राम, साई पल्लवी बनी है सीता, यश बने हैं रावण, रवि दुबे लक्ष्मण एंड सनी देओल लॉर्ड हनुमान। लेकिन भैया, ये जो ट्रेलर 4 मिनट का आया है, उसमें एक जगह भी हमारे पवन सुत हनुमान की झलक तक नहीं दिखाई गई है। ना टीजर होगा, ना मोशन पोस्टर। संजय लीला भंसाली के प्लान्स कुछ अलग ही चल रहे हैं उनकी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के लिए, जिसमें रणबीर कपूर के साथ साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल्स में नजर आएंगे। सो अगर रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली कुछ हटके प्लान कर रहे हैं फॉर द प्रमोशंस ऑफ द फिल्म, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल प्रमोशनल एसेट क्रिएट करने की प्लानिंग की है, जिसको वो अगस्त तक रिवील भी करेंगे। और जैसे ही ये डेट्स मुझे पता चलेंगे, आपको जरूर बताऊंगी। दायरा, नहीं, इंसान की जिंदगी वाले दायरे की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल, जो एक क्राइम थ्रिलर है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मूवी का फर्स्ट लुक इज ऑलरेडी आउट एंड इसको इसका रिलीज डेट भी मिल चुका है, विच इज 18th of September 2026। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों, फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार, ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए, इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka. Milci burka.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में है क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी
1: है आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा
1: मैं देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों आराम कर दिया तुम
1: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

दोस्तों हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना गा देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूँ आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहां भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे या फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। तो चलिए फ्राइडे कार म्यूजिक शुरू करते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना,
2: हिट

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है। थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नज़रों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की ज़रूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज़ दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्करा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

From meaty sea mist to blockbuster bliss, शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपको वो लड़की याद है जो फुगली में थी? शायद नहीं, लेकिन प्रीति तो सबको याद होगी। हाँ हाँ, कबीर सिंह वाली प्रीति। जी हाँ, आज बात हो रही है कियारा अडवाणी की, क्योंकि आज है July 31st, यानी कियारा अडवाणी का जन्मदिन। और वैसे तो उनका नाम आलिया अडवाणी है, लेकिन सलमान खान ने एक टाइम पे कहा था कि यार नाम तो बदल दो, इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक आलिया है। तो बस आलिया अडवाणी बन गई कियारा अडवाणी। और उन्होंने तो 2014 में फुगली से डेब्यू किया था, लेकिन पहली बार स्पॉटलाइट में 2016 में आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में एज साक्षी धोनी। तो फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बूम मिला था उनको लव स्टोरीज में, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी द ओरिजिनल लव स्टोरीज। और तब सबने कहा था कि हाय कौन है ये। और फिर कबीर सिंह तो सब जानते ही हैं। उसके बाद गुड न्यूज़, शेर शाह, जुग जुग जियो, सत्य प्रेम की कथा, हिट्स के फायर क्रैकर्स कियारा अडवाणी छोड़ती ही गई। और वैसे तो यार एक टाइम पे उन्हें टीचर बनना था, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, बॉलीवुड में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलिए करते हैं आज बॉलीवुड की इस टैलेंटेड एक्ट्रेस को विश विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट फेवरेट कियारा अडवाणी सॉन्ग ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए कियारा अडवाणी का

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

होता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए, क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज़ होती है जहाँ सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बी।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: आज से करेंगे सबका स्वागत।
1: शाम शानदार, let's do nautanki, have a funky time।
2: कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशन, सोलफुल म्यूज़िक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्ले लिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज़ जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनते हैं ये आवारापन राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो and then see the film, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. For now, Spider-Man की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. Oh, also, don't forget to catch my review on Instagram at Mirchi Jeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? Okay, I told you, Instagram, Mirchi Jeeturaj. For now, Spider-Man Brand New Day. By the way, कई लोग पूछे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. For God's sake, bro, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. This is Spider-Man Brand New Day, recommended by Jeetu Raj with four मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया के टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्प्रेरी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कहीं ना जाइए, क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था, लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था। क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सब ने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस सॉन्ग दिल चाहता है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Gambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएंगे?
3: हेलो हेलो।
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर तुम
4: विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची फ्रेश माल।
4: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाई शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना व्हिच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिडंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे ज़रूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है, उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज Only on मिर्ची It's hot
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake, please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी स्टोरी मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different in fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो also there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा also if you have kids around you enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day but I must give you a disclaimer अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH आए। और तब तक के लिए दिल चाहता है का जाने क्यों लोग प्यार करते हैं रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शाम लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्जेशंस होते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे कैफे से शुरू होती है, लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्जेशन ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है से शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्जेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों आपने भी ऐसी कॉन्वर्जेशन कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलो जी आप बोलिए
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तरह हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
1: फिर कोई
2: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
1: चप्पल पता
2: नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
1: आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट विद मिर्ची फ्रेश माल
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीज़ों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीज़ें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। Only on Mirchi, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

सच्ची सच्ची बताना दोस्तों, स्कूल की सबसे बड़ी टेंशन होमवर्क होती थी क्या? टीचर का वो कहना कि रोल नंबर 27 जरा बाहर तो आना। शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और प्राइम वीडियो का नया शो आदर्श बाल विद्यालय और उसका बैकड्रॉप ही यार एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल को संभालने की कोशिश करते हैं। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार के मेनन नजर आ रहे हैं, वो भी सीरियस रोल्स के अलावा कॉमेडी, और स्कूल के केओस में बहुत ही मजेदार लग रहा है। और नाम सुनते ही ना मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, मतलब वो अटेंडेंस का रजिस्टर, वो चौक की स्मेल, पीटी पीरियड का एक्साइटमेंट, और वो एक दोस्त जो हर मंडे बोलता था कि यार होमवर्क तो किया है लेकिन कॉपी घर पे रहेगी। और एनुअल डे, मतलब वो दिन जिसमें डांस से ज्यादा टेंशन होती थी कि पेरेंट्स को स्टेज से कैसे ढूंढे। वैसे आप भी बताइए, स्कूल का वो कौन सा टीचर या इंसिडेंट है जिसे याद करके आप आज भी बहुत हंसते हो? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए स्कूल के उन यादों के नाम एक बॉलीवुड क्लासिक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो

नमस्ते दोस्तों, आज की पारी सिर्फ गानों की नहीं, उन लोगों की है जो फैमिली चॉइस से बनती है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, जो बिना इनविटेशन के आ जाते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और बिना वजह साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप डे स्पेशल में स्वागत है। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। शुरू करते हैं एक एवरग्रीन यारी एंथम के साथ। गाने का नाम है यार बिना चैन कहां रे।